तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने।

तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने।

एक कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने।